0: सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू, व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू,
0: बीबीए र बीबीएस, ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी, फाइनान्स र मार्केटिङ,
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीएका लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे, बीबीएसका लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे।
0: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड, ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस, नेपाली, हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स,
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे।
0: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए, ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस, डेभलपमेन्ट स्टडिज, सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स,
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे, कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि।
0: क्याम्पसका विशेषताहरू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस,
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको,
0: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने,
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने,
0: आईसीटी, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने,
1: उपचार कक्ष, ई लाइब्रेरी, फ्री वाइफाई, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा, शुद्ध खाने पानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको,
0: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने,
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
0: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर, कैलाली।
2: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: काहुल बाबू अपने कलकलाइत रही अपना का करे कलकलाइत रही ले भुइया में के हो का करे भुइया में ढनवा नाइल बाटी
1: सुनिना दादू हमरा दुनू जना बना में घास काटा आयल रही मर संग भी सब पका दल नीना दादू हाली का करना होई एही ना सत्य हो पुकार के नो पुकार कोले से मिले रहा
0: ओहो ऐसी बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठनी हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई दादू अपने नी आते है ना संघरिया ध्यान दी हेलो मुकेश तू झटते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ तो यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग 84 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा मुकेश झटते ही आओ हाँ सबकू काम छोड़
2: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आई गिनू झटते
0: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जतरा साइकिल झटते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा डाले पड़ता ऐसी बेला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन बाजे पड़ता यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेरे से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुगाई पड़ता मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भर पर संघरिया मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच ऐसी बैठा कर उपचार केंद्र पुगा डाल हूँ अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
1: लगा
3: दादू सांप दस्ता से मोटरसाइकिल स्वयं से दी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
4: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप डसलक मनिन बचाई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था सांप डसलक मने न छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले ऊ मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा कर टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543326
3: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाई वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ान लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, एक आनल झोला दस का टस बाटी, ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: बाबू, ए बाबू, कल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था, तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने फुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर नगर पालिका उपभोक्ता उपकरण के प्रयोग करलक पानी जांच करे बेर 50% नमूना प्रदूषित। सुदूरपश्चिममा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेन पहल गर्न नेकपाकी निर्णय मुख्यमन्त्री हे मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव। 3 महिनामा 3,296 विपत्की घटना 160 जनाकी मौत। आज साउने संक्रान्ति शिवालयमा भेट। पूरा खबर। आज साउने संक्रान्ति पर्व परम्परा अनुसार स्नान दानो आफन्त हुकरन के जमघट हुके रमाइलो करके मनाइन चलन बा। सूर्य मिथुन राशि के समेत भोग पूरा करके कर्कट राशिमा प्रवेश करलक। पहिल दिन आज देशभर साउने संक्रान्ति के रूपमा मनाइन परम्परा रहल बा। साउन से लैके नै सूर्य दक्षिण ओर नेङ्न रहलक ओर से आज से लैके दक्षिणायन शुरू होइल बा। आज असक माघ 1 गते से शुरू हुईलक उत्तरायण और समेत साउन 1 गते से शुरू हुईना दक्षिणायन के दिन है विशेष रूप में मानगिलवा। अधिकांश नेपाली हुकरा असार महीनाभर ब्यार लगाइनमा बिप्टाइल रहना हो। रलकोर से हिला मैला से समेत लगना छाला संबंधी रोग ठीक पर्ना कहती साउन संक्रांति के दिन लुटो फेकैना चलन समेत चलत्याल बतागिलवा। परम्परा अनुसार काग भलायो ओस्तक कुकुर दराइनो कहना ओस्तक लुटे झारो समेत पानी अमला कागती ओस्तक अमरूद नाशपति लगायत के औषधि के रूप में प्रयोग हुईना। वनस्पति धरके समेत ई नाव के समेत राक्षस के पूजा करके अगुल्टो समेत फेकैना चलन बा। लुटो फेकैना ओ आपन कुल परम्परा अनुसार समेत सुप्पा ठठैना शंख फुक्ना घण्टा बजैना समेत अस्तक द्वार बन्द गर्न चलन नेपाली समाजमा रहतिआइलबा। साउन महिनामा विशेष रूपमा भगवान शिवकी पूजा गर्के मनाइन चलनबा। महिलाहरूलाई हरियर चुरिया लगायतके कपड़ा लगाके प्रकृति संगे नजिक हुके देखैन चलन फेरहलबा। साउन महिनाभर काठमाडौँके पशुपतिनाथ लगायतके देशभरके शिवालयमा भक्तजन हुकरनके विशेष भीड़ रहलबा। टीकापुर नगरपालिका से उपभोक्ता हुकला प्रयोग करती रहल 30 ठो पानी के नमूना परीक्षण करबेर उमध्य 18 ठो धारा के पानी में प्रदूषित रहल भेटागिलवा। पर्याप्त वर्षा शुरू नहीं हुईलक अवस्था में यहां के पानी के स्रोत दूषित होती रहलवा। पानी में समेत नगरपालिका से खाने पानी तथा ढल व्यवस्थापन फील्ड कार्यालय धनगढ़ी के प्रयोगशाला में नमूना परीक्षण कराइबेर 8 ठो धारामा इकोली ओसके कोलीफार्म दोनों समेत भेटागिल बाकलसे 4 ठो धारामा समेत कोलीफार्म फेला परल बाकलसे 3 ठो धारामा टोटल आयरन की मात्रा मापदंड से फिर ढेर भेटागिल बा। 3 ठो धारामा समेत मैगजीन की मात्रा में ढेर फेला परल बा। टीकापुर नगर पालिका के खाने पानी तथा सरसफाई स्रोत व्यक्ति जनस्वास्थ्य अधिकृत कमल रावल के कहाइबा। नमूना संकलन करगिलक धारामा लग शौचालय उसका ट्यांकी रलक पानी जमना खटहा रलक वर्षे समेत नलका के फर्स भटकल पानी के स्रोत समेत लगह के पशु चौपाया समेत बांधल पागिल बा। उसका पाइप हिलल हाथ धोना पानी में फिर सीधे समेत जमीन में गैलक। देगिल नगरपालिका के उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा के प्रमुख रंजो आचार्य के कहाइबा। नगरवासी हुकरा फोहर पानी खैटिरलक पानी जन्य रोग के समेत उपचार करेना तथ्यांग फे पुष्टि हुईलबा। नगरपालिका के 9 ठो स्वास्थ्य संस्थामा रिपोर्ट अनुसार नगरपालिकामा पिना पानी के समस्या हुई तिरलक जनस्वास्थ्य अधिकृत रावल के कहाईबा अस्तंख स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली फे टीकापुर खानेपानी में चार थो समेत टैंकी नारायणपुर खानेपानी का एक थो नमूना परीक्षण करगिलबा अस्तक परीक्षण कर खानेपानी ओ समेत नारायणपुर खानेपानी में समेत बैक्टेरिया फे समेत भेटागिल नहीं हो उसका नारायणपुर खानेपानी संस्था के आपूर्ति करलक धारा के पानी जांच करबेर क्लोरिन पर समेत भेटाइल नहीं हो जिला के सबसे सकु उपभोक्ता हुकरा शुद्ध पीना पानी के पहुंच नहीं हुलक फोर पानी खैती रलक हो वर्षा के समय में झन बढ़ना रलक से खाने पानी तथा धल व्यवस्थापन फील्ड कार्यालय धनगढ़ी के समेत केमिस्ट प्रकाश भंडारी के कहाइबा भंडारी के अनुसार कार्यालय में जसना लानगेला को कार्यालय में नई स्थलगत जाके नमूना लान के समेत प्रयोगशाला में जांच करलक पानी में बैक्टेरिया इकोली अस्तक कोली फार्म फेला परल बटागिलबा कैलाल के प्रतापुर थापापुर हसुलिया जैसिन क्षेत्र में आर्सेनिक फेबा कलसे कार्यालय के खाने पानी संस्था और व्यक्ति हुकरान के बोकल लानल नमूना में समेत ई वर्षा आर्सेनिक समेत भेटाइल नहीं हो। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पास फिर से भी सुनते रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट एक वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली
3: भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा साउन 9 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिज आएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जिउ झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ हाम्रो यहाँ ईसीजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक, भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो शनिबार।
0: नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दल से आपन नेतृत्वमा लव सरकार गठन गर्न पहल गर्न निर्णय गरल बा। प्रदेश संसदीय दल के नेता खगराज भट्टासे के अध्यक्षतामा विफेक दिन के बैठक से आपने नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न दल हुकन संगे संवाद गर्न निर्णय गरल हो। बैठकमा एमाले समर्थन फिर्ता लेहलपाछे, अलमन पर्लक अलमलमा पर्लक मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध समेत गरल बा। नेकपा के सरकार तत्काल दीर्घकालीन महत्व के निर्णय नै गर्न फिर समेत अनुरोध गरल बा। बैठकमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गर्न निर्णय गरल बा। सरकार से प्रदेश सरकार सभामा पेश गर्न समेत ओ आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 असार 1 बजेट के विषयमा विवाद बढ़ल पाछे मुख्यमन्त्री शाह एमाले मन्त्री हुकन बुधबार बर्खास्त गरल रह। मुख्यमन्त्री से समेत बर्खास्त गरल पाछे बुधबार नै एमाले से सरकार हे देहल समर्थन फिर्ता लेना निर्णय गरल बा। एमाले के समर्थन फिर्ता रहेल संगे अल्पमतमा परल शाह नेकपा के बजेटमा सहयोग गर्न अनुरोध गरल रह। मनो नेकपा भर यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न सघाइ नै सक्न समेत जनासेकल बा। बीतल 3 महिनामा देशभर विपद के समेत 3,296 थोक घटना घटल बा। ऊ घटनामा 160 जान के मौत हुई बा। अस्तका राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अनुसार वैशाख 1-32 गतिसम्म विपद के घटना मा समेत 2 बेपत्ता तथा 945 घायल रहल बाटै। यी अवधिमा 4,375 परिवार प्रभावित हुल्वा। प्राधिकरण से सबसे ढेर 897 आगलागी की घटना हुल्वा। कलसे 3 उम्ना समेत 17 जहन के मौत हुल्वा। 109 जहन के घायल हुल्बाटै तथा 990 परिवार प्रभावित हुल कहल्वा। यी अवधिमा सर्पदंश से 514 घटना हुल्वा। उम्ना 38 जान की मृत्यु हुलवा। कलसे 479 जाने घायल हुई बाटें तथा 517 जाने परिवार प्रभावित हुलवा। अस्तों करके हावाहुरी से 477 घटना में 13 जहन की मौत। 68 जाने घायल हुई बाटें। कलसे 1,356 जाने प्रभावित हुई जनाइल बा। पहिरो में 433 घटना में 12 जहन की मौत हुई बा। कलसे 15 जाने घायल हुई बाटें। कलसे 351 परिवार प्रभावित हुई बा। अस्तक चट्याङ पर्खे 223 घटना हुलमा 24 जान के मौत हुलबा। कलसे 120 जाने घायल हुलबाटै 262 परिवार प्रभावित हुल जनाइलबा। प्राधिकरण से सार्वजनिक लक विस्तृतमा वन्यजन्तु के आक्रमणमा 181 घटनामा 17 जान के मौत, 103 जाने घायल तथा 287 परिवार प्रभावित हुल उल्लेख करगिलबा। अस्तक बार से 161 घटना हुलबा। कलसे जमुना मौत हुना मा समेत 9 जहन के मौत हुई बा। कलसे 2 जाने बेपत्ता, 9 जाने घायल हुई तथा 396 परिवार प्रभावित हुई बा। उसक भारी वर्षा से 153 घटना मा 4 जहन के मौत, 1 जाने घायल तथा 132 परिवार प्रभावित हुई बतागिल बा। देशभर मनसून वायु के प्रभाव कायम रहला कोरसे शुक्रवार फे अधिकांश स्थान में वर्षा के संभावना रहल बताइल बा। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार मनसून के न्यून चापीय रेखा पश्चिम में सरदर स्थान से फे कुछ ऊपर तथा पूर्वी सरदर स्थान में आसपास में रहलक। देश के तमाम भाग में वर्षा होती रहल बा। महाशाखा के अनुसार हाल देशभर साधारणतया मौसम बदलन भाकल से बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश में पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान तथा कोशी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में 1-2 स्थान में मध्यम वर्षा हुई रहल बा। आज दोपहर के देशभर साधारणतया मौसम बदलनाबाक अलस्य पहाड़ी भूभागमा धेरै स्थान तथा बागमती गण्डकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभागमा कुश ओ मधेश कोशी प्रदेशमा एक दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित के मध्यम खालके पानी पर्न सम्भावना रहल जनाइल बा। हिमाली भूभागमा कुछ स्थानमा वर्षा हिमपात के सम्भावित अवस्था रहल बा। महाशाखा के अनुसार देश के पहाड़ी भूभागमा कोशी बागमती गण्डकी कर्णाली प्रदेश के हिमाली भाग तथा लुम्बिनी प्रदेश के तराई के एक दुई ठाउँमा भारी वर्षा के सम्भावना रहल बताइल बा। आज रात के फेर समय देशभर साधारणतया मौसम बदलना बागमती गण्डकी लुम्बिनी ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई भूभागमा एक दुई स्थानमा मधेसो कोशी प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई स्थानमा कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी

0: रड भान्साका लागि किचन र्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली संचालक मदन राज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588080।
1: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
2: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाँत खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
4: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046477417।
5: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। लम्बा समय से छपाई हुना बाँकी रलक सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स छपाई कार्य ओराइल बा। अब लवा स्मार्ट लाइसेंस के लग यातायात व्यवस्था विभाग से वितरण करना प्राप्त हुई लग 24 घंटा भीतर छपाई करके विभाग के उपलब्ध कराने व्यवस्था मिला सके सूचना तथा संचार मंत्रालय से जनाइल बा। मंत्रालय से विफिक दिन जारी कर लग प्रेस विज्ञप्ति अनुसार मंत्रालय सुरक्षण मुद्रा केन्द्र और पूर्वाधार विकास मंत्रालय अंतर्गत के यातायात व्यवस्था विभाग बीच में हुई लग दुई चरण में समझौता अनुसार विभाग से प्राप्त विवरण अनुसार कुल 27,00,000 स्मार्ट लाइसेंस छपाई कार्य सम्पन्न होल बा। मंत्रालय से ई संघ समेत विगत से लेकिन रहती अलग लाइसेंस छपाई के समेत उसका बैकलॉग पूर्ण रूप में अंत्य समेत हुना जना सकल बा। भारत में से नेपाल अवैध रूप में तस्करी कर लागल भारी परिणाम में कालो मरीच भारतीय भन्सार विभाग से बरामद करल बा। भारतीय संचार माध्यम के अनुसार भन्सार में समेत अधिरक्षक अमर उपाध्याय तथा अधिकारी हुक्रा पौन ओ समेत स्टोगी अनूप तिवारी ओस्तक नारायण सिंह के टोली से विशेष सूचना के आधार में 210 बोरा समेत ओस्तक चना दाल बोकल ट्रक रोक के खान तलाशी करल रहा। जांच के क्रम में ट्रक में रलक औसक चना दाल औसक सकू भंसार तथा धुआनी संबंधी कागजात सही भेटल से फेन दाल के बोरा भीतर समेत करीब 19 क्विंटल कालो मरीच समेत लुका के धरल फैला पड़ल रहा। उ कालो मरीच के लाक कौन फे वैधानिक कागजात प्रस्त समेत कारण नहीं सकलक भारतीय अधिकारियों का बटवाइल बाट। ओ इजरायल से नेपाल और दीर्घकालीन सहार केन्द्र में केयर गिवर में काम करना 1115 नेपाली श्रमिक छनौट करल बा। इजरायली सरकार से छनौट में पर्लाक वरीयता सूची में वैदेशिक रोजगार विभाग है समेत पठागेल बा। जमुना या आधार में अब श्रमिक पठाइना प्रक्रिया आगे बढ़ाइना बा। केयर गिवर के लाख 2300 रहल समेत माग कर लेन अंग्रेजी भाषा में समेत प्रेक्षण समेत माग 231 जानन के पास करल बतागिल बा। उ मध्य लक्की ड्र मार्फत समेत छनौट में हुईना जमुना 75% पुरुष हो 25% महिला रहल जनागिल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर नगर पालिका से उपभोक्ता हुक्रा प्रयोग करते वक्त पानी जांच करबे 50% नमूना दूषित। सुदूरपश्चिम में आपना नेतृत्व में सरकार बनेने पहल करने नेकपा के निर्णय मुख्यमंत्री

मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव। तीन महिनामा 3296 विपत्की घटना, 160 झनके मौत। आज साउने संक्रान्ति शिवालयमा भीड़भाड़। बकलत थारू भाषक खोज खबर अत्रै औरा समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुनो से बेके खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयासम सुनते विराम।

0: दाई नाचबा कहाँ जाए लगभग
1: पेशाब लाटा चर्पी जाए टुका
0: ए रुको नाटा कोशी नो कल से मई टर्च लाइट और लट्ठी दिए तू ले खजाव
1: का चीज सुनो लट्ठी और टर्च लाइट
0: का कर रही दाई रात बेला बाहर निकल पड़ से वाटवाइन जाए पड़ से दया फिर टर्च लाइट बार खा वो लम्बा लट्ठी ले खे न जाए पड़ा का करा की बर्खा छेक बा सांप रह सक था टर्च का अजराले सापन दिया खसेक दी था वो लट्ठी ठेक ठेक आवाज सुनकर साफ भग थका
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोट की छाई
0: दाई हमारा स्कूली मैडम सर मुख साफ नुक इतना ठाउसी न्यांग पड़ से वो काम कर पड़ से दया फेठ होशियार भी पथा गई सीख ल बाट का आम छटवा दुभा झपा अथवा ध्यान घास चलक ठाव में न्यांग पड़ से लम्बा लट्ठी देख ठैक ठैक बजेटी न्यांग पथा गई कल बाट
2: सात बर्खा छाकक समय में सुक्खा ठाव बैठ मन पड़े इ मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैठना पीला कोर्स सुक्खा ठाव का खोजी में उपरा बाहर निस्कट
1: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग्न आई सक विश्वास लग्ना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सक जैठा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

राम राम सबको रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रहक्रम स्वागत के संगे अभिवादन करना चाहम मई चांद मोरी गोल अपने के संगे पुगे त्याट संग्रह रत्न ऑनलाइन में www.tikaoperfm.org tikaoperfm एप्स मार्फत ओ हम पात्र मार्फत संसार के कोई भी कोनो से सबको जाने संगसंगे कार्यक्रम गोचाली हवाई हरेक हप्ता के शुक्रवार के दिन सवा दस बजे से करीब करीब करीब एगार बजे समय हमने सबको जाने संगे होने करथ्यो आज फिर संगे हुई आपू गला टीका बसंग्रह अपने उनके हाल खबर बिल्कुल रही कुशल मंगल आराम ही भी मजे ही भी अब के समय में काम धंधा में लागल बाटी फुर्सत के समय में बाटी जहां दोनों अवस्था में ही भी रेडियो टीका आपूर एफ एम 101 मेगा हर्ज जरूर फिर सुनती हुई भी ओनाइटी हुई भी और एक चोटी समय निकाल के लिए फिर साथ दे चाहिए ना भूले भी अपन मन परल संग्रह के खोजी में रहल संग्रह के अपने के अपन रानी बानी बताए पन रह अपने के कैसी रानी बानी हुल संग्रह के मन पड़े थी कैसी रानी बानी हुल संग्रह के नाई मन पड़े थी बताए लग जु आई सक थी सुने 91.5 61.55 के डगर खुल्ला बाबई सीटर सीटर सीटर जुरा मौसम बाबई एकदम मजा मौसम बाबई को ठाव में रिमझिम रिमझिम पानी बरसती हुई कोनो ठाव में एकदम शीतर मौसम कर ले बाबई बिल्कुल एकदम ये मौसम के संगसंगे अपने फिर एकदम कुशल मंगल आराम ही बिकना हम लागत एक जुटी समय निकाल के होने से फिर साथ देख चाहिए बिल्कुल ना भूले भी मनी कार्यक्रम के शुरुआत करी हम देख गीत से

0: हजुर, कार्यक्रममा फेर से स्वागत गर्न चाहब अपने हुँ अपने हुँ के भर्खरै रेडियो खोलके बैठल बाटी गले से सुन्दी बाटी समुन्नत समाज के लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज सुन्दी बाटी मै अपने के संगे आटु साँध अस्ते के मोरी गोल सा अपने के संगे पुग इत्यादि संगे रत्नजी अनलाइन में www.tikapurfm.org टीकापुरएफएम एप्स मार्फत हाम्रो पात्र मार्फत संसार के कोई भी कोनो से सकुजाने सँगसँगै आटी कार्यक्रमको च्याली हवै हरेक हप्ताको शुक्रबारको दिन सवा 10 बजे से करिब करिब करिब 11 बजेसम्म कोही सङ्घर्य लाइन मे आपुगला नै गर्न संकेत मिलल भवै फोन गर्बी गले से बिल्कुल फोन मे केन्द्र ठोके बारबाट नजर प्रयास गर्बी पूरा बारबाट के जा देवी आओ जाके सङ्घर्य बनाके चाहिँ बनाइन सङ्घर्य छोड्न बनाइन चाहिँ हो नाक देवी मेगा जानकारी गर्न चाहन् कोही सङ्घर्य लाइन मे आने गर्न संकेत मिलाउला कहाँ से कौन सङ्घर्य नै बोलकारी वहाँ है। हजुर राम राम।
1: हजुर राम।
0: कहाँ से केकर बोल सुनले हजुर?
1: माल राम चौधरी ओर नम्बर 7 खरौला से।
0: फिर से एक सुनाओ ली तो।
1: मालू राम चौधरी खरौला ओर नम्बर 7 से।
0: मालू राम चौधरी
1: ओर नम्बर 7 से खरौला
0: लमकी चूहा वार्ड नम्बर 7 खरौला।
1: हाँ
0: खबर कई सुन रहा मालू जी के?
1: अब दे तो ठीक है बेहरी अब छठो तो मने वा सकने पाने का
0: खेत और सकले हर दो फिर उस सकल का।
1: हाँ हर दो तो अब ये सावन के 10-12 घटे हुई
0: है। हर दो सावन के 10-12 घटे।
1: हाँ
0: तब जाके ओकर पास से हुई हरेरी नहीं।
1: हाँ तब जाके हरेरी पूजा।
0: तब जाके हरेरी पूजा कर दी बिल्कुल ही। गांव भरिक संग हर दो मने थे।
1: हमार तो यहाँ हरेरी क्यों जब भी मने मन लगती तब भी मनाए लगती।
0: हाँ एक मतलब कि गांव में उसी के सही संगे मनाने चालन गांव में सलाह नहीं होगी बरन
1: वैसी की नहीं हो वैसी की हमारे यहाँ सलाह है नहीं रहती थी।
0: बिल्कुल कहाँ करके दिन बिताई थी आजकल?
1: अब बेस्ते बैसलाती अब यहाँ रहो अब
2: बैसलाती हम लोग
1: घूमे जी वो तो घूमे जाए नहीं मिला पानी आया लगत ना। पानी आया लगत तो घूमे जाए
0: पानी आया लगत तो नहीं घूम करना है बंद कर दे। जस पानी आईना तो आईना अब इस समय में पानी ना है तो आए कब नहीं मतलब कि जून पकड़ के आधे तो मजा भी नहीं रहेगा ना हवाई
1: ऐसा की पानी रात के आए तो बढ़िया रहत।
0: हाँ रात के आए तो बढ़िया रहत बिहान के थम जाए ना तो अब मन तो अब काम करे जाए ना नींद घूम कर ना समय में तो पानी आई लागत नहीं। वह लागत अप्ठारो।
1: हाँ वही नहीं बढ़िया लागत
0: गोचाली कार्यक्रम मार्फत संघर्ष के खोजी में अपने आये लाती।
1: हाँ गोचाली कार्यक्रम
0: बिल्कुल अपने अपन भावना रुचि बने बताए अपन रानी बानी अपने कैसी रानी बानी हुन संघर्ष के मन पड़े थी।
1: अब मैं बढ़िया मने अपन संग लग्न और तरह से मने वैसी खपतिया घबर न्यास नहीं करना और मिल मिल के चलना वह बढ़िया कठू मैं तो।
0: का करना अपने है मन परत
1: हमी हिन तो संघरे बने फिर मन परत तो चौ मने नाई ढंग के थे तो फिर बने नाई मन परे हसकर थी।
0: बिल्कुल ढेर खुशी लागल मालू जी एकदम ढेर खुशी लागल लमकी चूहा 7 खरौला से समझ देली साथ देली एकदम ढेर खुशी लागल ढेर धन्यवाद देना चाहब अपने है। बिल्कुल अपन नाट पर संघरे समझ से कटी
1: अब मोरी आप मोर साल हो क्या कहीं रही वहाँ झुंगा।
0: नाव नहीं से कटी
1: नाव गोमा गोमा देवी गोमा देवी कहीं रही हम वो है ना हो।
0: बिल्कुल ढेर धन्यवाद मालू राम जी अब एक लग हम विदा है।
1: राम राम
0: राम राम मालू राम जी साथ देले रहे लमकी चूहा 7 खरौला से साथ देले रहे ढेर धन्यवाद देना चाहब सहभागी के लग वहाँ है। यदि वहाँ के भावना और रुचि अपने मन पर थे कले से लमकी चूहा वार्ड नंबर 7 खरौला अठ थे का नेपाई सेक थी और खैर वहाँ के मोबाइल नंबर लेना तो हमने बिसर गिली खैर बिल्कुलै मालु रामजी बिल्कुलै अपने के मोबाइल नम्बर लेन हाम्रो विसर गेली के परल नाइ लै पहिली अपने ऐना दिन में फिर अपने कार्यक्रम में सहभागी जने बिकन अपने अपने भरपूर अर्जी गर्न चाहतु कोही संग्रह फिर से लाइन में आते हजुर राम राम
3: राम राम दादा
0: कहाँ से के अगर बोल सुनती हमरे
3: बर्दिया से राजापुर के सुशांत चौधरी दादा
0: बर्दिया राजापुर तीन से नहीं
3: हजुर दादा
0: सुशांत चौधरी खबर कैसी बा भाई
3: खबर एकदम ठीक बा कहल दादा टिटी टिटी पानी आई रहा कहल मौसम बा कहल दादा एकदम मजा आया मौसम बा
0: पानी पड़ती बा आई थी बा नहीं
3: पानी हल्का हल्का लगभग आई रहा कहल दादा
0: कतरो रमाइलो बा बर्दिया लहंग
3: रमाइलो बा कहल दादा झुनिया पुल हेर्ती टाइम पास कहल एकदम
0: खेती पाती लगा के ओरैलस नहीं
3: खेती पाती लगा के एकदम ओरैल कह पड़ल दादा पानी वानी डार दूर कर घास वास काट कर लगभग
0: हरदवा फिर हो सकल
3: हरदवा हो गई दादा लगभग
0: हरेरी पूजा जे
3: हरेरी पूजा हो गई
0: हो गई लस नहीं
3: हजुर दादा
0: जे होस रमाइलो बाबै मौसम एकदम सुन्दर रमाइलो सुन्दर बा
3: एकदम सही बा कपल
0: चहल पहल एकदमै मजा बाबै
3: मजा बा कपल
0: राजापुर तीन ओसे के आजकल फिर मोबाइल में ढेर ढेर ढेर सुन जाए हेर जाए दौलतपुर झुलुंगे पुल कतरा दूर के दूरी में बाटी अपने के
3: एकदम नजीक नजीक हो डाटा लगभग एकदम भाई एकदम मस्त एकदम बढ़िया एकदम एकदम सहल पहल बहुत बाका एकदम रमाइलो बा
0: झुलुंगे पुल आईना हेरे आईना कतरा मनाई रहते हैं
3: लगभग बहुत बहुत डाटा एकदम एकदम
0: भीड़ रहने
3: एकदम भीड़
0: मौसम फिर शीतर शीतर रिमझिम रिमझिम पानी पड़ना नहीं और
3: संजय संजय संजय और बहुत बहुत मनाई रहते लगभग
0: संजय संजय लंग ढेर मनाई रहते हैं
3: हजू दादा दूध दूध से रहते लगभग
0: अब संजय संजय क्या अपने के फेई थी
3: हजू दादा कबू कबू
0: कबू कबू तो लगभग कतरा दूर दूर के मन इस समय हेरे थे झुलुंगे पुल
3: लगभग दूर दूर के कबू कबू कहाँ नेपालगंज कबू कबू कहाँ कहाँ कबू कबू कहाँ कहाँ कष्ट हो रहा कुछ भी नहीं करबो अस्त हो घूमबो देखबो अस्त हो
0: अतरा ढेर ढेर दूर से आये लठे मन हेरे
3: एकदम दूर दूर एकदम भक्खर भक्खर बनल एकदम वायरल पुल एकदम पड़ल दादा एकदम मजा आया लगभग मस्त बा पड़ल
0: वायरल पुल के वजह से फर्क नहीं पड़ी
3: हजुर दादा एकदम भाइरल पुल एकदम टिकटक बनिया बा मन कट्टा अटक अट्टा अट जब टिकटक हेरबो तो ओहो हो झुलनिया पुल खाली कना दादा
0: ढेर ढेर ढेर खुशी लागल ढेर खुशी लागल बिल्कुल समझ डेली और समझती फिर रेडियो प्रेमी संघर्ष हुई नहीं शुरू करे से ठीक भावना रुचि
3: भावना कलम से अपन से छोट मनाइन माया करना अपन से भारी मनाइन आदर सम्मान करना लगभग फुटबॉल भलीबॉल खेलना संग्रह बहना बा लगभग धनी गरीब नहीं छुटना ढंगा पान से टू रहना कह पड़ल दादा
0: अपने के भावना और रुचि को संग्रह कर मन पर थी कले से एकदम सहज से अपने कैसी के भेटा सक जाए
3: कॉन्टेक्ट नंबर दादा लगभग जा का इच्छा इच्छा रह कल से 9814-5151-50 9814-5151-50 राजापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 सुशांत चौधरी
0: आई ठर थे गानो नंबर में एकदम सहज से पाई सक जाए
3: हजुर दादा
0: समझे सकते
3: आई भी दादा टाइम मिला का टक एकदम मस्त बा झुलिया पुल आई भी एकदम टिकटक बने भी वायरल मस्त हो जी भी वायरल मने दादा और मस्त
0: बिल्कुल बिल्कुल अपने न्यौटा कर भी गले से एकदम आप हमें समय मिला के नहीं
3: ली ली दादा एकदम समय मिला का कोनो कोनो दिन आप समय नहीं मिले से मिला के पड़ना अवस्था हो तरह फिर आई पड़ल घूम पड़ल फ्रेश मोर भी नहीं था वो तब जतरा के एटीएम कर दुख सुख पीड़ा वहां से भी झुलिया पुल में सब सीधा मिल जाए एकदम हावा फिर मजा मजा मस्त रह एकदम सरफा हवा
0: जुरार सितर एकदम फिल्टर करल हवा
3: हजुर दादा एकदम एकदम मस्त हवा फिर एकदम
0: तब खेत खेती पाती लगे जम्मा सिरा सब उतर जाए
3: सब उतर जाए दादा एकदम मस्त से वहाँ जीबो मन देखो सहल पहल टिकटक बनाई देखो कहाँ कहाँ से मन आयल रही आप सहल पहल मत हो लगभग दुख चूरा
0: बिल्कुल धेर धन्यवाद बाबू अपने है बर्दिया राजापुर तीन के संग रही रेडियो प्रेमी संग रही एकदम वहां चाहे साथ देती रहें ढेर धन्यवाद देना चाहब सहभागी के लग वहां है यदि वहां के भावना रुचि अपने मन पर्थ वहां संगे संग बनना बनैना जो अपने मन पड़ी कल से राजापुर नगरपालिका तीन सुशांत चौधरी 9814551150 यही नंबर में एकदम साझे से भेटाई सकती थी वहां है 9814551150 यही नंबर में पैबी वहां है ओ जाके संग्रह बनेबी कना अपने नर्जी करना चाहम लौरे रहने कोई संग्रह वहां से चिंजान हुई सकबी कना मई अपने मई घर जानकारी करना चाहम लाइन खुल्ला बाबू शून्य 91551255 के दगर खुल्ला बाबू हाथे पर हमें फिर से एक गीत जोड़ी गीत के पास हमें फिर से ये बाटी लाइन खुल्ला बाबू

हजुर कार्यक्रममा फेर से स्वागत गर्न चाहब अपने निर्धारित समय फेर बिल्कुल डगर कट्टी लागल अवस्थामा हाम्रो आफ गलाटी कुछ समय के हमार थे बाकी भयो अपने फोन करबी कल से फोन में केन्द्रित होके बाद बटने जो प्रयास करबी मजा नेटवर्क हुईल ठाउँ से साथ दीदी पूरा बाबू रोके जा देबी और संघर्य बना के चाहिए वृद्धागर में चाहिए संघर्य के भावना है ना टूर देवी यानी कि संघर्य बनाई न छोड़ना चाहिए ना कर देवी मई का जानकारी करना चाहम अपने हुकरण के संगे सितर सितर सितर जुरार मौसम भाव अब के समय में निंगटी घुमटी आटी फुर्सत के समय में हुई भी काम धंधे में लागल बाटी की मजे हुई भी कुशल मंगल आराम में हुई भी कना आपने हुकरन बिल्कुल हमन लागत और चाहिए बरखा बूंदी के समय आज सावन एक गते शुक्रवार आज से बिल्कुल मौसम फिर लमसम लमसम बद्री बद्री ढेर भावे शीतल मौसम को पानी पड़ती भावे को जैसी फिर हुई और बिल्कुल समय में चाहे अपने होके फिर अपन स्वास्थ्य प्रति अपन शरीर प्रति एकदम ख्याल करना फिर वत्र जरूरी बावे मई का जानकारी करना चाहे अपने होके अपन घर लगे के ठाउं घर अंगना के ठाउं में चाहे कुछ खटही खटावे कल से उहिन पूर्वी जाके पानी जमे ना देवी ढर रही कल से उखर देवी सफा करबी जौन की मस्त के सांप सपोह के फे जो ना बैठे पाए ना नुके पाए एकदम सरसफाई में ध्यान देवी वस्ते के चाहे पानी फे बिल्कुल शुद्धिकरण करके उमाल के ढिका के पानी पीना जब बानी बैठे भी आजकल का करे कि दूषित पानी पानी आठ जमट और कोनो कोनो संग्रहण के लग गए बम के लगे चाहे लहदोर रहत हस्ते के चाहे टॉयलेट फिर हुई सकता वैसी ठाव के पानी चाहिए अपने होते एकदम शुद्धिकरण करके निर्मूलीकरण करके पानी पीना जो बानी बैठे भी बसे तीर से खाना चीज से बिल्कुल दूर रबी का नाम मई का जानकारी करना चाहम अपने स्वच्छ और ढेर पानी पीना बानी बैठे भी पोष लग्न चीज जो खाइना जो अपने बानी बैठे भी वस्ते के चाहे लडिया के आसपास जो रहल गांव बस्ती के तमाम संगठनों के बारे में अपने एकचोटी सचेत होके अपने होकर बैठ देवी का नाम अपने मई का जानकारी करना चाहम लदिया में आजकल बरखा बुनी के समय पानी आए थे एक हाले थे लदिया बार हट वस्ते के लदिया बार तो चाहे गांव घर में पेलना जो एकदम डर रह तमारे अपने होकर एकदम चलाक होके बैठ देवी सुरक्षित ठाव के पहचान जो कर ले रही और खाना चीज के जो हो वो अपन हित चाहना महत्वपूर्ण कागज जो अपने एकदम सुरक्षित ठाव में धर ले रही और कुलो के आसपास रहल संग्रह के चाहे अपने छोट लड़का आटाई गले से यानी कि बुढ़ायल मन आटाई गले से वहां पर उनके एकदम रेख देख में एकदम ध्यान पुरेबी लड़का परकन का पता पानी हो महीन दुबई का ना वहां पर का पता तब मारे अपने फिर एकदम चलाक हुई अपने फिर सुरक्षित ही अपन घर परिवार है फिर सुरक्षित बनी बनाई करना आपने मई का जानकारी करना चाहम लाइन खुला भावे सुनी 91.5 163 255 के दगर खुला भावे भावना रुचि सुने न कार्यक्रम गोश्याली हरेक हफ्ते के शुक्रवार के दिन 10:15 से करीब करीब करीब 11:30 सम्म ऑनलाइन में www.tkapfm.org tkapfm एप से मार्फत और हमारे पात्र मार्फत है संसार के कोई भी कुनुआ से हम सको जाने संग संग आती अपने उपकरण के संगे हमरे दुई जाने तरंगी त्यो हिटी आती रत्ना जी साथ लेती आते मई चांद के पार लाइन खुला बावे अठे पर हमरे फिर से एक ठो गीत जोरी गीत के पास हमरे फिर से बाटी लाइन खुला बा।

हजुर कार्यक्रममा फेरि स्वागत गर्न चाह निर्धारितसँग फेब्रुअरी डगरकटी लागल अवस्थामा हाम्रो आपुगलाती हत्रबटेलसम्म रेडियोमा के साथ डेली रेडियो प्रिमियम मेगरसँग धेरै धन्यवाद सहभागी सङ्घहरूलाई फेरि धेरै धन्यवाद सहभागी जनाइनको यी सङ्घहरूको प्रयास गरी धेरै धन्यवाद दिन चाहब अपने यिना दिन अपने फोन बिल्कुलै सफल है अमोरी पोल अपने ग्रहण के रेडियो सेटसम्म पुगा दले गर्छ सङ्घर रत्नजी हेफे विशेष धन्यवाद व्यक्ति एक ठाउँ गीत छौतीमय कार्यक्रम सञ्चालक चाँद के पारे खप्टेकेलाई विदा हेतु अपने के पल शुभ रहे।

0: किछु नै माई बिलाइ रहलै।
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दी गोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उने ना पट्टा नि पैना त
2: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान से कि कतरा सुघर बना कन लबाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 9864841208 ओ 9846239261।
3: ऐसी 80% रोग पानी के कारण ले
4: थोपा थोपा में शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूवी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधि प्रशोधन गरिएको
5: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लीटर जार में सर्वत्र बजार में उपलब्ध छ।
3: डेलिभरी का लागि
5: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
3: टीकापुर कैलाली
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9870106772।
4: स्वास्थ्य का लागि पानी

0: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेजका तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। उच्च जीवन स्तर निर्माणका लागि निर्णायक क्षण यही हो।
1: विगत 27 वर्षदेखि सेवारत क्यूएए प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू बीई कम्प्युटर, बीसीए, बीबीए, बीई सिभिल का साथै एमबीए कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइ सक्नुहुन अनुरोध छ। प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे। साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ।
0: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास, उत्तर भेडी 4 धनगढी, फोन नम्बर 091-523-312 र 523-949।
2: भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा साउन 9 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग, मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान, एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिज आएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो शनिबार।
3: कौनो व्यक्ति है लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
4: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नाई देना, बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
3: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
4: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
3: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।

0: कापिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कई था कभू पेंसिल हेरा कई था कभू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रत गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
4: साउन 2 गते शनिबारका दिन
3: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खट्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
4: डाक्टर आउने दिन साउन 2 गते शनिबार
3: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 98688-0008 र 98253-6772

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमर फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोफ राइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर में
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 98484-27359 र 98-48-42-73-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोहर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा
3: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
2: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
5: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूवी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
4: डेलिभरीका लागि
6: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
4: टीकापुर कैलाली
0: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9800710672 स्वास्थ्यका लागि पानी
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: नहीं करने सर।
1: आओ आओ, तू पायलट से इनाम झील कर दो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सफवा रख लू, सर लग के घूम रहते हो, जैसे चेयर सर लग में हलचल नहीं करें, मोर सपो करके छापे न तो पायलट जाके
1: मोर सपो है ना, चलेना तो नहीं चलेगा ना?
0: नहीं चले ना सर।
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा पूरा से कह रहा हूँ, मोर सपो देखो कल से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूल से थी वाकर में रहा 20 असर नहीं करत कना नहीं हो जीती हाँ मुआल सपा मुआल देख पड़ना सपा है ना नमता हाँ थाले पकड़ा नहीं भी
0: सर नौ सपा देखना से आ करना
1: सपा मुआल देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास असम थे सपा दस सकत वह वर्ष से मुआल अवस्था में थे सपा हाथ से चलाए नहीं भी बेन तो इतना मा लट्ठी ले चला था मुआल नहीं मुआल कैसा जाना से गिठा
2: मुआल सापन से सावधान रही मुआलवा मार्गी सपोहना पकड़ना खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासन थी सपवा दस से था संभव हुई सम सबको फोटो खींची वो पहचान कला विज्ञान से संपर्क करी
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में सेव दिठा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन् त भाउ के पाउँछ त्यहाँ
6: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
7: ए एभ्रीलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
8: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
5: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ
9: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स
10: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स
11: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
12: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 98484648673 र 98148602004

0: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कूटपीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखने से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
2: भागीरथी मेडिकल टीकापुर में विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। डाक्टर बम बहादुर को क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेंटर टीकापुर में साउन 9 गते दोस्रो शनिवार का दिन नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत धेरै अनुभवी र सीनियर मानसिक रोग, मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान MBBS MD न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौका को फायदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी

खुशी जीवन को आनंद लिऊ। हाम्रो यहाँ ईसीजी र ल्याब टेस्ट को सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुर को क्लिनिक, भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम को नजिकै टीकापुर। टाढा का बिरामी नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारी को लागि सम्पर्क नम्बर 0195620287005 98350 4770। समय बिहान 10 बजे देखि दिउँसो 3 बजे सम्म। डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो शनिबार।

0: मुका मारा मामा
1: तू इनसे पूछे से नहीं वरन की का
0: पूछे का मिला लिखा जहाँ पे रोए की जोट हो
1: तो शाले मने नहीं नहीं की जाएं तो किन की जाएं हो
0: वही रोए ले लो
1: अरे सुनो ना शाली एक तो बात बाविका
0: हाँ क्या कहा तो मोरा था रोज़ में जाइए वरन बताइए ना बताओ
1: तू खूब शुगर गीत गए तो कहूँ
0: क्या कहा
1: तुम्हारे बहुत ज्यादा कॉली मन से
0: हाँ हुई वस्ते छागल हुई है
1: वस्ते कहाँ ठगी सुनो ना एक तो मैं आज खूब गीत गाना लागल बाविका चाली भाटू बैठ के मजा से गीत गा ली ना आज
0: हाँ ले गाऊ गाऊ तू गा के सुनाऊ तो मैं
1: ले तो मैं शुरू करा तू ना
0: हाँ ठीक है
1: ले तो

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया ना करा रेडू बिगरी
3: नहीं का मम्मी टीकापुर FM से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल से सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूले भी।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब ही जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: नरेन दादु मैं तो अपना फोन आईटी की दौड़ त्या गई नो है भौजी कहाँ बाती
1: ओ गोंडे में सुटल बाती बाबू चोली न भरिए
0: भौजी कहाँ से काटन अपना हन हरक आदर पावे तो सफा सुखर बने लो बाती ता तर फिर पार्टी तो जा रहा अपना हन
2: यहाँ पोली बुक कट लगो नानी अपना एम्बुलेंस खबर तो कर बाटा कटाबेर में को आपू ना हो
0: ना ते भौजी हमारे बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा हना जिंस रेगी वो नरेश दादू एम्बुलेंस लेना समय लागे छे था लगे के को मोटरसाइकिल बाकल छे उहे में बैठा के भौजी है ना सरपरन सा उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला तक खाना जात फे दिने न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अब ना ठीक कली डॉक्टर रो निकट सम जरमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाएकना सपवा कटलक अंगहन स्थिर बनिना प्रयास कर पठा तम्म कस गेन रुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकल से फफर करारी बेरम्या अप्टेले से झन समस्या भिना भेलेको से बेरम्या न शान्त रह सहयोग कर पठा क्युमने सपवा कटलक ठाउँ से ऊपर दौड़ीले कस खबन्ना फे कठ असी कर्ण से रक्त संचार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सपवा दशलक शरीर का भाग काट खफाक पर्ना अवस्था थे आइसिक था
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेफदी था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौ
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 98584 89213 इमेल ocmcticapur@gmail.com

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजीत 5 बजे थारू हासा के खोज खबर में अपने स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेघाट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हमारा पात्र नेपाली पात्र में फिर सुनती रहलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से विश्वविद्यालय में सुधार में फिर सुशासन पहिलो शर्त हुलक। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति किशन दत्त भट्ट के कहा कृषि विज्ञान के उप प्रधानाध्यापक उनके स्थायित्व नहीं हुलक गुनासो। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 द्वारा 120 जना ज्येष्ठ नागरिक सम्मानित। छाता व झूठ वितरण मलापूर्ति 5,61,000 मेट्रिक टन नाहल। ओ स्वदेश में उत्पादित जूता चप्पल के निर्यात में सरकार सहजीकरण करना प्रधानमंत्री की सलाह। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रधानाध्यापक डाक्टर कृष्ण दत्त भट्ट सरकार और विश्वविद्यालय की नीति अनुसार संस्थागत सुशासन आवश्यक रलक बुटीलोट उपकुलपति नियुक्त हो स्यागल्पा छ। पहिलो चो औपचारिक कार्यक्रम में कृषि विज्ञान संकाय स्कूल अफ एग्रीकल्चर की नौ स्थापना दिवस में शुक्रवार टीकापुर में आयोजित कार्यक्रम में बोलती उपकुलपति भट्ट सिन्बोटीलोट। कार्यक्रम उपकुलपति भट्ट के कहा उपकुलपति भट्ट कृषि विज्ञान विषय के उप प्रधानाध्यापक के स्थायित्व भन्ना के काम हाली हुई आश्वासन देलबाट यहां 8 वर्ष से प्रधानरत उप प्रधानाध्यापक उनके स्थायित्व नहीं हुलक। शैक्षिक विकास के अवसर नहीं हुलक गुनासो बा। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रधानाध्यापक डाक्टर गोविंद सिंह विष्ट 5 वर्ष पहिलो प्रधानाध्यापक उनके स्थायी भर्ना करना काम रोकल्पा छ। भाली सेवा आयोग खुन्नाओ दिन के नियुक्त फे हुना बोटिलोट उप प्रधानाध्यापक बसंतराज भट्टाई 2075 साल के असोसम कठकी कोशी में बैठक कक्षा संचालन करलक। 9 वर्ष लगलग सुविधा सम्पन्न भवन पूर्वाधार बनल्पा सफे प्रशिक्षक हुकुन के स्थायित्व तो सुविधा नई हुलक दिन नई हुलक गुनासो पोखनाफे केन्द्रीय कार्यालय पुगल ना पर्लक बटेटी नया नेतृत्व कृषक को समस्या समाधान करना अपेक्षा धरलबाट। स्कूल अफ एग्रीकल्चर के प्रमुख संजय कुमार राउत आर्थिक वर्ष 2082-83 में 2,92,00,000 रूपया के आय व्यय प्रस्तुत करलबाट यहां मसे 4 ब्यास स्नातक तह पूरा करलबाट स्कूल अफ एग्रीकल्चर 47 बीघा जमीन में नमूना बाली पशुपालन करतीलबाट। सह प्रधानाध्यापक डाक्टर केशव बहादुर कोर 8 वर्ष आग टीकापुर बहुमुखी कैंपस के कोठा मडिन कार्यालय खोलके शुरू हुलक। संकाय केशव क्षेत्र के विकास हुए से फिर मानव स्रोत के स्थायित्व विकास हुई शेक्लक बोटिलोट। टीकापुर बहुमुखी कैंपस के उप प्रधानाध्यापक प्रेम प्रसाद भंडारी रिल कठिनाई के बावजूद आशा करके काम करती रहल उप प्रधानाध्यापक के समस्या समाधान पन्ना बोटिलोट। असंक टीकापुर बहुमुखी कैंपस के सहायक कैंपस प्रमुख आत्माराम अधिकारी मानव स्रोत की स्थायित्व प्रयोगशाला निर्माण और फलफूल बगैचा में बनाईने शेक्लक बोटिलोट। कृषि विज्ञान में स्नातक तह एक ठो सत्र में 110 जना विद्यार्थी स्नातकोत्तर तह में हर्टिकल्चर और एग्रोनोमी विषय में 12-12 जना विद्यार्थी पढ़ाईटीएलक। विश्वविद्यालय में अब डीन नहुलक प्रशासनिक काम स्नातकोत्तर तह के विद्यार्थी हुकनके पठन पाठन में समस्या हुई रहलबा। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत 75 जना ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कलबाट। वडा कार्यालय के वडा मरलक 120 जना ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कलबाट आर्थिक वर्ष 2082-83 की विनियोजित कार्यक्रम अन्तर्गत वडा मरलक ज्येष्ठ नागरिक छाता ओझुल वितरण कलक वडा सचिव तारा विक्रम राणा जानकारी दिलबाट। वडा कार्यालय की हरेक वर्ष ज्येष्ठ नागरिक सहकनै सम्मान कतिएटी रहलबाट। खोज खबर में एकरी विश्राम विश्राम पास फिर से बीसुंती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ।
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे, बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे।
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस डेभलपमेन्ट स्टडिज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर कैलाली
0: के तपाईलाई थाहा छ
3: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
0: हो र
3: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
0: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
0: के छ त विकल्प
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन
3: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
0: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
4: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
5: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
4: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
5: ईसीजी सेवा
4: डिजिटल एक्सरे सेवा
5: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
4: फोन नम्बर 98-484-27-359 र 98-48-72-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बारो टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै
0: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा सरकार आर्थिक वर्ष 2082-83 असार 24 गतेसम्म 5,61,493.85 मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति करलग जनेरबाट यही परिमाण वार्षिक 6,00,000 मेट्रिक टन आपूर्तिकी लक्ष्य करी 94% हुल्बा कृषि तथा पशु मत्स्य विकास मन्त्रालय के अनुसार गत आर्थिक वर्ष केलग रू 28,82,14,00,000 बजेट विनियोजन कल रही गत असार 24 गतेसम्म 4,91,300 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरीद केला टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न हुँदा उक्त मन्त्रालय के अनुसार हालसम्म दुई कम्पनी मार्फत 3,27,579.80 मेट्रिक टन यूरिया 2,03,426.30 मेट्रिक टन डीएपी तथा 30,487.75 मेट्रिक टन पोटास सर्की कुल 5,61,493.85 मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति कलबाट उक्त अवधिसम्म देशभरकै गोदाममा 92,592.35 मेट्रिक टन रासायनिक मल मजौदाता हुल्बा ओमध्ये 49,104.30 मेट्रिक टन यूरिया 24,012.85 मेट्रिक टन डीएपी 19,475.20 मेट्रिक टन पोटास मजौदाता हुल्रह आगत वर्षकी मजौदाता समेत समावेश गर्के असार 24 गतेसम्म 5,18,278.55 मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री हुल्बा 3,07,16.60 मेट्रिक टन यूरिया 1,92,931.15 मेट्रिक टन डीएपी 18,330.80 मेट्रिक टन पोटास बिक्री हुलक उक्त मन्त्रालय जनाइलेबा बाह्य मार्गमा 288.75 मेट्रिक टन रासायनिक मल ढुवानी के क्रममा 86.05 मेट्रिक टन यूरिया वो 202.70 मेट्रिक टन डीएपी वा प्रतिनिधि सभाकी महिला तथा सामाजिक मामिला समिति के राष्ट्रीय समावेशी आयोग संघ संविधान परिकल्पना कलक राज्य के हरेक तह समावेशी विपणन व्यवस्था के संबंध में छलफल कलबाट समिति के आशी हजारबार में बैठक में सांसद थुक्र समावेशी आयोग लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अपांगता और ज्येष्ठ नागरिक के क्षेत्र में प्रभावकारी काम करना नैसेक लगबुटीलोट पहुंच के भर में बार बार एक जना व्यक्ति आरक्षण कोटा के प्रयोग करती लकटी सांसद थुक्र यह व्यक्ति के एक चौकिलिक आरक्षण के सुविधा प्रयोग करा पैना करके कानून बनेना सरकार सिफारिश करना आग्रह कलबाट बैठक में राष्ट्रीय समावेशी आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशी आयोग के कार्यक्षेत्र अलग थेवरसिंह ग्यारह क्षेत्र संग अध्ययन अनुसार अनुसंधान करके कानून के लाग सरकार सिफारिश कल खुलेसेफे कार्यान्वयन हुई से लगबोटीलोट नेपाल 142 जात जाति मध्ये 74 जनजाति के राज्य के कोनोफेस निकाय में पहुंच नैपुगलक अध्ययन में सियाल पास जात जाति के अलग क्लस्टर बनेना सरकार सिफारिश कलक अध्यक्ष जोशी बैठक जानकारी करेलाट समिति के सभापति आकृति अवस्थी समाज में प्रत्येक नागरिक समाज समान जनक बासना पैना अधिकार सुनिश्चित करना और संवैधानिक आयोग संघ के समन्वय में काम करना आग्रह कलबाट अभिन समूहक सिफारिश पुनः एक सौ फलो करना आग्रह करती सभापति अवस्थी आयोग कलक अध्ययन अनुसंधान आवश्यक ठासम्म पुगेना फे अनुरोध कलबाट खोज खबरमा फेर्से विश्राम विश्राम पासा फेर्से विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टीका प्रफेम
6: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
7: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
6: मिस्तरान वर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुए कि गुंगुआ बुढ़ो होना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
8: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
10: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
11: साउन 2 गते शनिबारका दिन
10: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
11: डाक्टर आउने दिन साउन 2 गते शनिबार
10: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772
12: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
13: स्मार्ट एड्रेसमा पाइने सामग्रीहरू
14: नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो,
13: हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहके स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता चप्पलकी निर्यात प्रवर्धनमा सरकार आवश्यक सहजीकरण गर्नमा प्रतिबद्धता जनाएबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकी कार्यालयमा आज फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएशन अफ नेपाल एफएमएएनके पदाधिकारी सदस्य संघ छलफलके प्रधानमन्त्री शाह जुत्ता चप्पलकी आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सृजना केलाक आवश्यक सहयोग पुगेन बोटिलोबाट वहाँ तीनठो तहके सरकार समयमा जुत्ता चप्पल उत्पादन सम्बन्धी सिपमूलक तालिम संचालन तथा नेपाली जुत्ता चप्पलके प्रबन्धन तथा बजारीकरण निजी क्षेत्र प्रोत्साहन गर्न बोटेलोबाट वस्तुका उद्योगकी उत्पादन क्षमताके अनुसार कच्चा पदार्थ आयातके सीमामा ट्रयाकिङ तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी बनेन उहाँके कहाइरह। छलफलमा संघके पदाधिकारी तथा सदस्य धीर सिंह सिमानाकमा से हुन अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न कर्के दायरा बाहिर अलग अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय उत्पादन कानूनी दायरमा लन्न गुणस्तरीयहीन जुत्ता चप्पलकी आयात नियन्त्रण गर्न तथा आयातित जुत्ता चप्पलमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागू गर्न प्रधानमन्त्री शाहके ध्यान आकर्षण गरेला रहे। संघ उहाँके सरकारमा आवश्यक नीतिगत सहयोग बजार संरचना उद्योग मैत्री व्यवस्थापन हुलेसेफे स्वदेशी जुत्ता चप्पल उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सेक्ना विश्वास दिलेला रहे। संघके अध्यक्ष सुरज बजाडे, निवर्तमान अध्यक्ष रूद्र नेपानी, महासचिव निर्मल भट्टाई, सल्लाहकार कालिदास गौतम, सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य विदुषी राणा लगायतके सहभागिता रह। यही समाचार सँग खोज खबर बढ़ाई दिनासे पहिले खबरके मुख्य शीर्षक फेरिसकेको छु। विश्वविद्यालयकी सुधारमा फेरि सुशासन पहिलो शर्त, अभिलक्ष सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयकी उपकुलपति किशन दत्त भट्टाके कहाए। कृषि विज्ञानकी उप प्रधानाध्यापक हुनकी स्थायित्व नै हुला गुनासो। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा 120 जना ज्येष्ठ नागरिक सम्मानित, छाता व झुट वितरण। मलापूर्ति 5,61,000 मेट्रिक टन नागल। स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता चप्पलकी निर्यातमा सरकार सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री शाह। डिटा बोकला खोज खबर तरह प्राविधिक मित्र रत्नापुर मघना धन्यवाद। डिटिया बोकला खोज खबर से मिता चौधरी विदाई। एक 6 बजे खोज खबर सुन सिक्बी सामुदायिक रेडियो टीका पुरा सुनती रवि। राम राम।

0: जी भैया आप सफा दस्ता दरम्यान रसरा सा अंगना में लैन अपनी बसे इधर रहा
1: एक का गति ना हम रसा यो कई खाल डेंटी बैठी जेन मोटरसाइकिल घुमा कर धरने करी ना
0: बैठा बैठा दरम्यान रसरा सा मोर पास बैठाई वो एक जना दरम्यान पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाइवेर बरमिया बेहोश हुई से ना पीला कोर से पास से पकड़ का बैठा पड़ता का
2: दरम्यान अगर हुई ना कई कमाई पकड़ का बैठा टू सुनील जी अपना जैसी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पदंशक दरम्यान उपचार केन्द्र लगना सजिलो हुई बा
0: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था पटना ठमटा मई असर मोटरसाइकिल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो झट्ट पा जिला से दरम्यान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो बिना मेरक सुचा का लगभग एंटी भेनम महिला उपचार केन्द्र में ले जाए पड़ता
1: अपना हुआ जैने करी ना मई द्वान लगा सके राजे
0: वहां न कटलक सपा का फोटो खींचना बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो हुला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
2: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाई नहीं तो ढील हुई जी
3: सफा दस दारण कल से उपचार कलाक मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच में सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटी भेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में लै जाई सप्पा कटलसे मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेर्दिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाण्डौ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: स्टील की रेलिंग, आगी पानी हो, घाम से नई बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नई ना, विशेषत हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरकी उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
1: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
2: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल।
3: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का?
2: मिस्तरान बर्जनाउक न घर हेरो न, पट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
4: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848।

0: ई लड़का के कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, कहा का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कब्बू लड़का कभी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटाका था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ हो टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कब्बू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरास बाटिन ये बुरो ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले साउन 2 गते, 9 गते, 16 गते, 23 गते र 30 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: पाखुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
1: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
0: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
2: हेरी न काका, आई फुला टुरे बारी में गेल रही सपो काट देली, 20 निकाल देवी की कह के लेके आयल बाटू।
3: सपो कटलक 20 तक उपचार करो तो सर्वदम सब उपचार केंद्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई, वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ। बिखार सपो कटलक हो कि नहीं हो के पता लगा कर सर्वदम सब उपचार में प्रयोग है ना, एंटी भेनम से उपचार कर।
2: सर्पदम सब उपचार केंद्र के विषय में मैं फिर सुनल तो रहूँ
3: तर कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केंद्र ले जा रही। नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एन्टी भेनम समेत निशुल्क उपलब्ध करे था, अत्यंत चिंता नहीं पड़त।
2: खाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई, मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकले बात।
3: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत के था, मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी।
4: रे बाबू संदेश गैरो का झटका बाहर आता।
5: सर्पदंश प्रभावित जिल्लामा बेरमहेनका समयमा जो उपचार कै ख ज्यान जोगिन उद्देश्यले सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा बा। यी उपचार केन्द्रमा सर्पदंशक उपचार निशुल्क हुइथा। सापनका कटाईले मनैनका मृत्यु नहुएकै ख सरकार सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुना एन्टिभेनम निशुल्क उपलब्ध गरैला बा। आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र सम्पर्क नम्बर ठहरला रह पठा। सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइ लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेट्दिथा।
0: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।